जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हरि को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिलों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

ये पीस की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना, आज बुधवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को बस एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है विपिन सचदेवा की आवाज में, ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहना।

और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, मधुस्मिता की आवाज में ये सुंदर भजन प्रोग्राम में सुनते ही रहना। रेडियो SBS के जरिए जो पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए आज के प्रोग्राम में सुंदर सा माता जी का भजन भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और वो भी खास तौर पर कुमार सानू और अलका जी की आवाज में।

सभी सुनने वालों की सेवा में सुंदर सा माता जी का भजन कुमार सानू और अलका जी के आवास में बस पेश की गए। चलिए एक और सुंदर सा भजन मिलकर सुनते हैं आज की सुबह की प्रोग्राम में।

SBS के जरिए अति सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में अबकी बार खास सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक सुंदर शिव जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे अबकी बार प्रोग्राम में ये खास सुंदर और सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, ये सुंदर सा भजन होगा।

सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सेन रामबरन की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

रहा है एक सुंदर सा माता जी का भजन पेश किया जा रहा है। और इस भजन के बाद आप सभी सुनने वालों की सेवा में आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुनने वालों, चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। और आज की प्रोग्राम में एक सुंदर सा गणेश जी का आरती भजन बस पेश किया जाएगी। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

प्रभा के आवास में। तो फिल्म परवाना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपके बाहर फिल्म खेल की ओर हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। एक बार फिर से कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। उदित नारायण।

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब कई बार अतीफ असलम की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

अतीफ असलम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई एक गाना बस प्रोग्राम

कयामत से कयामत तक उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम कयामत, एक फिल्म जो 2003 में बस रिलीज की गई है।

आवासमी गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की सर ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए आज की प्रोग्राम में एक बार फिर से अलका जी की आवाज में खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है, साथ में होगा कुमार सानू।

19 तारीख अगस्त का प्रोग्राम आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बाहर की ओर देखा जाए, बादल छाया हुआ मौसम है, बारिश का मौसम है।

द्वारा और रेडियो SBS का ऐप के जरिए 24 घंटा लगातार आप ले सकते हैं। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। अब ऐसे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-26-66-11। यही टार की नंबर काम में लाइए जब भी आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप करना चाहेंगे। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल फोन के जरिए, अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। रेडियो SBS का प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए आप सुन सकते हैं। रेडियो SBS.nl वेबसाइट के जरिए DAB प्लस रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम सुनाई देता है। ऑनलाइन देश के बीच में मिडल नीदरलैंड में दूर दूर शहरों में DAB प्लस द्वारा हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और प्रोविंसी साउथ होलैंड में भी आसपास की शहरों और दूर दूर शहरों में ये प्रोग्राम भी आप अपना मोटरकार में, अपना घरों में सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए। काफी बातें हुए तो चले तुरंत इस बारिश का मौसम में हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर। सबसे पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ।

जब प्यार किसी से होता है, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ पुरानी नगमे आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और हमारे बहुत से सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं रेडियो SBS का। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना फिल्म जानवर से बस पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले किशोर कुमार एन आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म जवानी दीवानी की ओर। द मैन विद हैव अ क्रिल वॉइस किशोर कुमार और द रॉकेरो क्वीन द नाइटिंगेल ऑफ एशिया आशा भोसले।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, खास तौर पर किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई, काफी प्यार भरी गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म जुगनू, उसी फिल्म का एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, सॉन्ग बाय द मैन विद ग्रीन वॉइस, एक बार फिर से किशोर कुमार प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना गाना जो अबकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है किशोर और लता जी की आवाज में और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। उसी फिल्म से अबकी बार ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी। किशोर और लता जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश और आरती मुखर्जी प्रोग्राम में होगा।

रेडियो वेस में इसकी जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सिनेमा की सेवा में आरती मुखर्जी और मुकेश जी की आवाज में गाना भी आपने सुना। पुरानी फिल्म अनारी की ओर हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से मुकेश की।

इस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना खासतौर पर स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन।
1: मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले मन्ना डे की ओर और मन्ना डे की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, दिल का हाल सुने दिल वाला, श्री 420 फिल्म का नाम है।

0: वाला दिल का हाल सुन दिल वाला सीधी सी बात न
1: मन्ना डे की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम श्री 420 दिल का हाल सुने दिल वाला गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जिंदगी देने वाली सुन द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए, द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में अभी आपने सुना, आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए है। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। लता मंगेशकर प्रोग्राम में अबकी बार होगा और फिल्म का नाम

लता मंगेशकर की आवाज में गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था झुक गया आसमान, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चले प्रोग्राम में आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। और था झुक गया आसमान, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चले प्रोग्राम में आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। और अब की बार फिल्म का नाम होगा

धनजू बीच की गई जब छाए मेरा जादू। आशा जी की आवाज में फिल्म का नाम था लूटमार। उसी ये फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए। जब छाए मेरा जादू ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 032 565 65 60।

सुनने वालों की सेवा में पुरानी फिल्म नजराना, पुरानी फिल्म नजराना का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आपकी बार मोहम्मद रफी और

रेडियो SBS की जरिए गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। लाइव की जरिए रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

60 66 11. चलिए अबकी बार कुमार सानू जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अबकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है,

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए फिल्म गुड लक उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है सुखविंदर सिंह और शिल्पा राव की आवाज में।

सुखविंदर सिंह एन सिल्वा राव की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले गाना प्रोग्राम में कमल खान और नीति मोहन के आवाज में आज की प्रोग्राम

गए रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। हरिहरन आपकी बार प्रोग्राम में आवास में जाना प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। हरिहरन आपकी बार प्रोग्राम में

कुमार सानू और साधना सरगम के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हासिल उम्मीद है कि गाना सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। उदित नारायण और श्रेया जी

चलिए गाना बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में ये गाना।

अबुल सुप्रियो की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत से सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। हाउटन शहर से समस्त दुखित परिवार महादेव मिसिर और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। दोनदाह 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में पत्नी एल्फी के पति, 3 बेटा और 1 बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा के पिता, 3 पतु और 1 दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम के ससुर, 1 पोतीन और 2 पोता जेडा, जेनाइडो, रोशन और नेलन के आजा। हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंदर दत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए है, जो सुरिनाम पारामारिबो अबेनी स्ट्रात नंबर 3 के निवासी था। आरती के आखिरी दर्शन करने के लिए आप हर एक को मौका दिया जा रहा है। वोसदाग 19 अगस्त सावंस फन 6 तो 7 उटवाट सेंट्रम डालवैक फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट में। आरती फ्राइडाग 21 अगस्त स्मिदाग फनाफ 4 क्रेमेटोरियम डालवैक इन द ग्रोते औला फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट शहर में दा करिया किया जाए। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानी भूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है। सुन वालों, यहाँ से रेडियो SBS का प्रोग्राम में एक शोक समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। बृहस्पतिवार 13 तारीख अगस्त डोंदाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंदरदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए हैं, जो सुरिनाम पारामारिबो अबेनी स्ट्रात नंबर 3 के निवासी था। अर्थी फ्राइडाग 21 अगस्त स्मिदाग्स फना 4 क्रेमेटोरियम डालवैक ग्रोते औला में फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट में दा करिया किया जाएगा। पत्नी एल्फी अपने पति, 3 बेटा और 1 बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा अपने पिता, 3 पतु और 1 दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम अपने ससुर, 1 पोतीन और 2 पोता जेडा, जेनाइरो, रोशन और नेलन अपने आजा को बहुत याद करते हुए और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस पेश कर रहे हैं।

बृहस्पतिवार 13 तारीख अगस्त डोंदरदाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में हौतन शेख काम नंबर 5 का रहने वाला चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए हैं, जो सूरीनाम पारामारिबो अबेनिस्ट्रात नंबर 3 के निवासी था। अर्थी फ्राइडाग 21 अगस्त स्मिदाग्स वनाफ 4 uur crematorium Daalwijk, grote aula me Florida Drive nummer 7 Utrecht overvecht me da kriya kiya jayega. Patni Elfie apne pati 3 beta aur ek beti Kishan, Vikas, Amresh aur Karishma apne pita 3 patu aur ek damad Miranda, Lindsay, Sakita aur Ram apne sasur ek potin aur 2 pota Jada, Janairo, Roshan aur नेलन अपने आजा को बहुत याद करते हुए और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। इसी तरह से रेडियो SBS की सर ये बस प्रोग्राम में एक मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई।

सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल, टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार और आपका दख हॉरोस्कोप होता है। जावेद अली प्रोग्राम में

शुक्रगा में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की प्रोग्राम में।

दिल जो ना कह सका, फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। चले गाना आतिफ असलम की आवाज में पेश किया जा रहा है। मतलब

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में अगली बार कुमार सानू और अलका जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

मुझको छेड़ो, ऐसे न मुझको देखो, जो देखना ही कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार के है राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो दिल हो।

आवास में ये कैनबिस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव शहरी तरह से बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो 24 आप सभी के लिए बड़ा एक बार होता है 0302656560। एल्बम में से ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वाले।

ये खास गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये गाना भी एक एल्बम में से निकाला हुआ गाना है।

अनुराग की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलते हैं सिद्धार्थ के आवाज में।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ गाने एल्बम में से निकाल कर आप सभी के लिए आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले मधु की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुनो वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं, और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है।

रेडियो SBS के जरिए जूनिता गांधी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अल्ताफ सईद के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आते होठ मगर कुछ कह नहीं पाते, अपनी बेबसी हम किस तरह कहें, कोई है जिसके बगैर।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

0: कसम भी है वादा भी है उसकी गली का फासला थोड़ा भी है।
1: द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। इस खास पुरानी नख्मे की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। जिंदगी से प्यार करना सीख।

जिंदगी से प्यार करना सीखने आए हैं। आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किए हैं। सुनवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। मन्ना दे और लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

मन्ना डे और लता जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना तलत महमूद और लता की आवाज में पेश किया जा रहा है।

तलत महमूद और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। चलिए अब की बार प्रोग्राम में हम आप भूली चलते हैं मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में गाना जो पेश किया जा रहा है, जब भी ये दिल उदास होता है।

भी ये दिल उदास होता है। मोहम्मद रफी एंड शारदा की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 60। आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियो SBS का कंतूर का टेलीफोन नंबर 24 घंटे पर दाग बराबर होता है। किशोर कुमार एनाशम

0: हाथ प्यार का छूट नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।
1: प्यार करा ही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।
2: किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुन वालो रेडियो SBS का।
1: प्यार करा ही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।
2: किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुन वालो रेडियो SBS का प्रोग्राम शेडू त्रेख होलैंड से।

लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। चले प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

बरसाओ मेरा महबूब जो आया है मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी के बाद दमाइटी मुकीस प्रोग्राम में होगा। माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों की ख्यालों में, मुकेश जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार, द मैन विद अ ग्रीन वॉइस, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। किशोर एनाशम, किशोर कुमार एनाशम,
1: आओ ना।

चलिए प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, छोड़कर तेरे प्यार का दामन।

चलिए अपनी बार द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। द माइटी मुकेश प्रोग्राम में

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, इस गज़ल दूर जुबेन नौटियाल दे दी थी सो मोय ना ना जुबेन हाँ फेर्दर मेट शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा, ये रात ताल आउट द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कॉम्प्लीट लीजिए मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी आउट द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे एन खसादुर जुबेन नौटियाल कॉम्प्ट होने लगा आउट द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना, क्वम अ द फिल्म क्यों हो गया ना, एंड इट इज अक्टेर दूर विवेक ओबरॉय एंड ऐश्वर्या राय। दी तैत वार आर डेट। Uit de film Want It komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

0: En nu reclame, het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Is आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार सानू की आवाज में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे। मैं उम्र गुजार दूं इन आंखों में।

ऐ दिल इतना बता दे, बेहतरीन गाना आपने सुना हरे हरन की आवाज़ में फिल्म दीवाने से। अगला गाना प्रोग्राम की तुम के लहर में है रूही से, सचिन जिगर और मिक्का सिंह की आवाज़ में आप सुनिए भूतनी।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आ जमा हिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जी ने करदा।

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। हाउटन शहर से समस्त दुखित परिवार महादेव मिसिर और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे है। डोंडाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में पत्नी एल्फी के पति, 3 बेटा और 1 बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा के पिता, 3 पतु और 1 दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम के ससुर, 1 पोतीन और 2 पोता जेडा, जेनाइडो, रोशन और नेलन के आजाम। हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंदर दत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए है, जो सुरिनाम पारामारिबो अबेनी स्त्रात नंबर 3 के निवासी था। आरती के आखिरी दर्शन करने के लिए आप हर एक को मौका दिया जा रहा है। वोसदाग 19 अगस्त सावंस फन 6 टोट 7 उटवाट सेंट्रम डालवैक फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट में। आरती फ्रेडाग 21 अगस्त स्मिदाग फना 4 क्रेमेटोरियम डालवैक इन द ग्रोते औला फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट शहर में दा करिया किया जाए। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानी भूटी पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है। सुनने वालों, यहाँ से रेडियो SBS का प्रोग्राम में एक शोक समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। बृहस्पतिवार 13 तारीख अगस्त डोंडाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंदरदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए हैं, जो सुरिनाम पारामारिबो अबेनिस्त्रात नंबर 3 के निवासी था। अर्थी फ्राइडाग 21 अगस्त स्मिदाग्स फना 4 क्रेमेटोरियम डालवैक ग्रोते औला में फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट में दा क्रिया किया जाएगा। पत्नी एल्फी अपने पति, 3 बेटा और 1 बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा अपने पिता, 3 पतु और 1 दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम अपने ससुर, 1 पोटीन और 2 पोता जेडा, जेनाइरो, रोशन और नेलन अपने आजा को बहुत याद करते हुए और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस पेश कर रहे हैं।

बृहस्पतिवार 13 तारीख अगस्त डोंदरदाग 13 augustus 72 साल 72 साल की आयु में हौतन शेखकाम नंबर 5 का रहने वाला चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए है, जो सूरीनाम पारामारिबो अबेनिस्ट्रात नंबर 3 के निवासी था। अर्थे फ्राइडाग 21 augustus स्मिदाग्स vanaf 4 uur crematorium Daalwijk grote aula me Florida Drive nummer 7 Utrecht overvecht me da kriya kiya jayega patni Elfi apne pati 3 beta aur ek beti Kishan Vikas Amresh aur Karishma apne pita 3 patu aur ek damad Miranda Lindsay Sakita aur Ram apne sasur ek potin aur do pota Jada Janairo Roshan और नीलन अपने आजा को बहुत याद करते हुए और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए है। इसी तरह से रेडियो SBS की सरिये बस प्रोग्राम में एक मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार अभी आपने सुना, जो प्रोग्राम में पेश की

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है।

राम राम, नमस्कार और सलाम वालेकुम सुनने वालों, आप सुन रहे हैं रेडियो SBS और मैं हूं आपका सेविका नीता। अनफन हार्ट, गुड नाइट लिए लुस्टरर्स।

सुनने वालों, 6:15 गुजर गए हैं। यह है स्टूडियो टाइट। हमारा साथ होगा 6 से 9 बजे तक। आप जरूर प्रोग्राम सुनते रहना। आपको कुछ कहना है या रिएक्शन देना हो या कोई गीत मांगना हो तो आप जरूर तार कर सकते हो। तार का नंबर है 0322 66 66 11।

0: आज सुनने वाला प्रोग्राम कैसा होगा? आज जैसे हर बुधवार को आप सुन रहे हैं, 2 घंटे आप सुनेंगे ऑल दिस गोल्ड, पुराने गीत, और आज से 9 बजे तक आप सुनिए लोकल प्रोग्राम। यहाँ से हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है आराधना।
1: तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच-सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मियों की निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: बागों में बहार है, फिल्म का नाम है आराधना। इस बार आप सुनिए फिल्म प्रिंस से निकाला है द मैन विद द डायमंड वॉइस, मोहम्मद रफी।

0: पास आओ,
1: जरा पास आओ,
0: आ जाए, जरा पास।
1: The man with the diamond voice, मोहम्मद रफी। शंकर जय किशन के म्यूजिक पर आपने सुना, फिल्म का नाम है प्रिंस।

झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले, फिल्म का नाम है मेरा साया। फिल्म पुष्पांजलि, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और सादे राय मन्ना डे।

0: नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और मन्ना डे के वास में शाम ढले जमुना किनारे सुंदर सा भजन आपने सुना। सुनवाला आप सुन रहे हैं रेडियो SBS।
1: कभी काली रतियां कभी
0: अलबेला
1: सुहाने
0: नहीं तीन एन एन फाइव तक का फिल्म है सुनो।

0: द लेजेंड तलत महमूद के वास में, फिल्म का नाम है जहानारा।
1: फिर वही शान
2: न झटको जुल्फ से

फिल्म सिड्डी से निकाला था, द मैन विद डायमंड वॉइस आपको सुनाए। इस बार आप सुनिए फिल्म शहनाई, रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले। साथ दे रहा है द लेजेंड मोहम्मद रफी।

सदियों पुरानी अपनी कहानी रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी के वास में माइटी मुकेश फिल्म का नाम है दिल

0: कुछ देर अभी।
1: मैं जी मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है दिल ही तो है। फिल्म एक राज, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और किशोर दा के आवाज में।

नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और किशोर दा के वास में फिल्म एक राज से निकाला था। एक बार फिर से फिल्म का नाम है दिल ही तो है। माइटी मुकेश।

ठुमक मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। माई जी मुकेश के वास में फिल्म का नाम है कहीं प्यार ना हो जाए।

0: चोरी चोरी जो तुमसे मिले तो लोग क्या कहेंगे। माइटी मुकेश के वास में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है परस्मनी।
1: पास रहते

मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। फिल्म संग्रम, द मैन विद द डायमंड वॉइस, मोहम्मद रफी। इस बार सुनने वाला आप सुनिए CID 90909। फिल्म का नाम है CID 909। रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले।

0: ऐसा हो जाए
1: मैं जागूं
0: कि मैं जागूं और तू सो
1: जाए मैं जागूं तू
0: फेमस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मिलन
1: मैं जागूं
0: माइटी मुकेश के वास में
1: मैं जागूं
2: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
3: Is daar aashiqui-ka asar chhod jaunga.
4: Main Kumar Sanu aur main aa raha hu aapke shehar Amsterdam mein.
5: Main Anuradha Porwal aa rahi hu Amsterdam mein.
3: Raah mein unse mulaqat ho gayi.
4: 6th of September, unforgettable 90s.
5: के लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड
4: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए
6: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

0: सीमा और निजाम की आवाज में
1: प्यार है।
0: आपने सुना आपसे प्यार है। नदीम खान एल्बम का बोल है 15 सुपर सोल्स वॉल्यूम 5।

मेरे हमराही। अब ये साथ न छोड़ेगा, चाहे जग बैरे हो जाए। निजाम वागिद हुसैन के आवाज में एल्बम का बोले अ क्लासिकल लव मैसेज।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।